ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कनाडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 केनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 केनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लिए तो हाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 केनेडी रोड साउथ Brampton.

जानकारी तो मिल सकती है। 28 अगस्त नूं रखड़ी का त्यौहार है, भैणां भरावां दे प्यार का त्यौहार, ते रखड़ियां दी बहुत खूबसूरत रेंज ब्रह्मटन कैश एंड कैरी तो तुसीं मिल सकदी है। आओ, तरह तरह दियां बहुत सोहणियां सोहणियां खूबसूरत रखड़ियां तुहानूं मिलणगियां बड़े वाजिब रेट दे विच। 905-230-4800 905-230-4800 ब्रह्मटन कैश एंड कैरी पंजाबियां दे कोस्को दे नाम नाल जाणिया जांदा, 100 कैंडी रोड दे उपर स्टोर। दूसरे साडे प्राउड स्पॉन्सर विलेज ऑफ इंडिया शुद्ध शाकाहारी भोजन दे विच जाणिया पहचाणिया नाम, 114 कैनेडी रोड, फोन नंबर 905-450-3333 और 6300 एरन मिल पार्कवे मिसी सागा, फोन नंबर 905-542-1333। लंडन हैलीफैक्स और विंडसर दे विच भी ब्रांच है। तुसी इन्हां दा बफे ट्राई करो, एक बार 40 तो 50 आइटमां दे नाल

हाँ चलो साढ़े प्रोग्राम के थ्रू तुसी कोई अपने ऐड देनी चाहते हो तो लगता है कि असी तुहाडे हैल्प कर सकते हैं तुहाडे उस प्रोग्राम दे विच तुहाडी मदद करके तो जरूर 647-367-5353 नंबर है 437-243 मेरा इंडिविजुअल परसनल नंबर है तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो मिलांगे कल किसी नवे विषय के नाल किसी नवी गलबात के नाल। तद तक दे लई खुश रहो आबाद रहो ते जिंदा रहो।

0: सीधी ऐप वी डाउनलोड करो t.watertaxi द बेस्ट वे टू गो टू सेंटर आइलैंड।
1: और मैं मेरा क्वेश्चन एक होर जिहड़ा साढ़े इंडिया नूं जां कह लो कि जिन्नियां भी साउथ एशियन कंट्रियां ने उत्थे करप्शन का इन्ना बोलबाला। मैं 13 साल एज ए गवर्नमेंट कंट्रैक्टर काम किया वा, अज की डेट च सेम सिस्टम आ, अकाउंट ब्रांच का हाफ आ, ड्रैंक ब्रांच आ, एस टी ओ जेई चीफ आ, और कि उपर तक पैसे जाते जिहड़ा भी उस महकमे का मंत्री, इदा ही तुहाडे जिहड़े माल महकमे रजिस्ट्रियां होंदियां तहसीलदार नायब तहसीलदार डीसी फिर उस महकमे का मंत्री। करप्शन इन्नी ज़्यादा कोई पार्टी आ जाए वह कभी नहीं बंद होंगी। मैं चाहूँगा दसो ये बारे हल है कोई इत्थे सुनदा जी।
2: तो दो चीजा ने, एक तो जी धारणा बन गई समाज के बच्चे कि देखो जी मुलाजम रिश्वत लेंदे है, कलर्क रिश्वत लेंदा है। आम तौर पर तुम वेख लियो कि हेठले पद्धर ते उंगल उठती है जी। बी डी पी ओ दफ्तर च रिश्वत चलती है, नगर कौंसल च चलती, जिवें तुसीं भी जिक्र किया है, सच है कि चलती है। यह सच है कि हेठले मुलाजम कर्मचारी रिश्वत कट्ठी करन विच बहुत वड्डा रोल निभाउंदे है। दूजा जिहड़ा वड्डा सच है कि असल विच ओह रिश्वत चलदी क्यों है, ओह कट्ठी हो के ओहदा वड्डा हिस्सा कित्थे पहुंचदा है, असल विच ओह तुर है। जिन्ना चिर चीज़ नूं असीं नहीं समझांगे, मैं पहलां दसदा कि मैं इत्थे इह नहीं कहिंदा कि थल्ड़े मुलाजमां नूं रिश्वत लैण दी कोई मानता मिलनी चाहीदी जां उहनां नूं कानूनी अधिकार है, बिल्कुल डट के विरोध होना चाहिए, कानूनी कार्रवाइयां होनियां चाहीदियां, तंग दिओ जिहड़ा रिश्वत लैंदा है, कानून उत्ते सख्ती नाल काम करे। परंतु सच्ची गल इह है कि रिश्वत दा कारण यह आ कि रिश्वत जिहड़ी हैगी है कलैक्ट करन लई लोक रखे आ, जांदी उपर आ। मेरे सिर्फ कहण तों भाव है कि जिन्ना चिर असीं उपरले पद्धर ते रिश्वत का विरोध नहीं करांगे कि भाई तुसीं किवें अपने महल मनारे बना ले, किवें तुसीं मरलियां चाहे सी ते अज एकड़ां दे मालक हो गए, किवें विदेशां दे विच तुसीं होटल रेस्टोरेंट खोल ले, किवें तुसीं एडे वड्डे पद्धर ते करोड़ां दीआं रिश्वतां इकट्ठियां कर लईआं, उह चीज़ नूं समझ दी लोड़ है। भारती ताणा बाणा विगड़िया है, हेठलियां दे कन्न पुट्टो, उपलियां दे खिलाफ डट के बोलांगे, फिर जाके पूरा इक गल सीधे पासे नूं चलण दी उम्मीद है।
3: बिल्कुल जी, असी अज दा पंजाबी लहरां दा खबरां दा सैशन, सो इत्थे सानू दिओ इजाजत, इस तों बाद तुसी नवी सिद्धू होणा दे नाल सुणोगे पंजाबी लहरां दा अगला हिस्सा। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रमेश जी, कल नूं मिलदे आ नवां दिन नवीं खबरां ते नवीं गल्लबात दे नाल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सो इत्थे मैनूं दिओ इजाजत, भुल्यो ना मुस्कुराउणा, हासे आबाद रखियो, रोशन दा लै सवेरा, फिर मिलांगे, याद रखियो, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।
0: ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ।
4: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475051557 6475415 ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 416-477-2040 416-477-2040

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ

0: बत्तीसों 416-206 बत्तीसों। डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर डॉक्टर गरेवाल के क्लिनिक नु विजिट करो। दंदा वास्ते 905-452-8211। नानक डक क्लीनिंग, डक क्लीनिंग सर्दियां होने तो पहला जरूर कराओ। अज सवेरे मैनू भी किया गया कि बुलाओ उन्होंने। नानक वाले थोड़े घर का फिल्टर भी चेंज कर जाते हैं, फरनेस की एज बता जाते हैं। 416-729-1521 416-729-1521। ऑटो इंश्योरेंस अगर घट नहीं रही शांत ना बैठो, डायमंड इंश्योरेंस के पवन कौर गिल नू लाजमी कॉल मिलाओ। तुसी यकीन मनो 3 मिनट दिते पवन नू, हो सकता तुहाडी 2000 की सेविंग हो जाए, 500 की, 1000 की। 6473259100 647-325 9100 नंबर दे उत्ते जिहड़ा हैगा पवन कौर गिल उन्हां नू कॉल करनी है। किसी ने कोल कोई करजा करजे नू खत्म करना है तुसी मेरे नाल जरूर कॉन्टैक्ट करो। 416-518-3200 416-518-3200। ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, फुल लाओ, फुल हुण लाओ, अगले साल अपने आप निकल निकल के आउणगे, कुछ नहीं करन दी जरूरत। गर्मियां स्टार्ट हुंदे एंड तक रहणगे, अक्टूबर नवंबर तक। फुल्लां वास्ते ग्रीन वैली गार्डन सेंटर 647-222-5601 647-222-5601। ट्रू नॉर्थ 416-803-0623 कॉल करनी है। सो मैनू तो इजाजत नहीं कहते तो मैंने शो तो बाद 416-518-3200 कॉल कर सकते। कंधा ते दिल दियां तू दीप जगा रखी, नैणा च संधली जे ख्वाब सजा रखी, तू ही बदलेंगा फिजा जो कजा बनी, रोशन मीनारां दिल विच वसार के अपने दुआवां सानू शामिल रखना। धन्यवाद, सत श्री
1: अकाल। घर नू पेंट करवाउणा हुंदा है, कन्फ्यूज हो जांदे हो, बहुत सारे पेंटर्स ते
2: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो। असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
3: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: एक कमीशन दे दे के, तो हमें लगता है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें हमेशा सस्ते में मिलती है, जो की अब हवा है, हवा सांस ले रहे, सस्ते मिली ना, फ्री में मिली ना हमें, तो इसलिए पीछे ना जाइए, कोई चलाकी नहीं है, फंडिंग हासिल करें 0% पर, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है, साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं, असली डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडिट नहीं होते डॉक्यूमेंट आपके इसमें।
1: वेरी गुड। अच्छा, जैसे फैमिली ऑफ फोर है उनकी कितनी की बन जाती है फंडिंग, थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बस एक दो मिनट ही है, इसमें अपना सारांश में बता दें, सारांश सारांश में बताएं।
0: तो अगर फैमिली ऑफ फाइव है $1,70,000, फैमिली ऑफ फोर है $1.5 लाख, जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा फंडिंग आपको आपके खाते में आती है। हमारी फीस हमेशा फ्लैट है $199, वन टाइम फीस है, काम होने के बाद में देनी है, तो ईमानदारी आपकी तक होती है। आसान से कोर्स करें फुली ऑनलाइन, जिसमें सिर्फ अपने अटेंडेंस लगानी है मंडे टू फ्राइडे 3 घंटे, फोन पे या लैपटॉप पे, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउस वाइफ है, उबर ड्राइवर है, अनएम्प्लॉयड है, पेंशन पे एलिजिबल है, 0% पे लोन, जिसकी किस्तें 2.5 साल बाद स्टार्ट है, ऐसा कोई लोन सुना है जो 2.5 साल बाद किस्त स्टार्ट हो, और 15 साल में पे करते हैं, शुरू में ब्याज कितना, 0%, 2.5 साल बाद ब्याज कितना है, 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 पे $2,500 ब्याज, वो भी साल का, महीने का भी नहीं। पीछे ना रहिए, बहुत लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है, 1,000 square feet का, रेप्यूटेड लोकेशन पे, 218 Expert Boulevard पे, 7 बंदे आपके लिए काम करें। नंबर नोट करें 4372-2431-75, 4372-2431-75, कॉल करो, असेसमेंट कराओ, ऑफिस आओ, 4372-2431-75, 4372643175, नंबर अगेन 4372-2431-75, रिफाइनेंसिंग ना कराओ, स्किल डेवलप करो, फंडिंग 0% हासिल करो बिना चलाकी के नाल।
1: जी बिल्कुल, ते देख लो किन्ना वधिया है, क्रेडिट कोई चेक नहीं थोड़ा होना हैगा, कोर्सेज तुसी वधिया करके अपने आप नूं अपग्रेड करो, वधिया जॉब मिलूगी, जिन्नी वार मर्जी तुसी कोर्सेज दे विच इनवॉल्व हो सकदे हो, है ना, कहण दा मतलब तुसी एलिजिबल हो सकदे हो, एक कोर्स थोड़ा खत्म हुंदा तुसी दोबारा करो, थानू फेर फंडिंग जिहड़ी मिल जानी है। सो तुसी नंबर नोट कर लो जी, इन्हां दा बड़े वधिया तरीके दे नाल थोड़े नाल गल्लबात करनगे, सारांश दा नंबर, सारांश नंबर बोले एक बार फिर,
0: नंबर है जी 4372-2431-75, 4372643175, स्कोर आपका 0 भी क्रेडिट का एलिजिबल है, क्यों, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, पीछे ना रहिए, 4372-2431-75
1: जी। थैंक यू सराश,
0: थैंक यू
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, सारांश नाल तुसी गलबात कर लो, बहुत वधिया जानकारी थानू मिलूगी। कई बार ना आप सोचते रहने भी आ पता नहीं इदा कि हो गया, जे आ हो गया तो इदा, मतलब जे करके बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड दे विच हुंदे आ, पर तुसी जो भी थोड़े मन दे विच आ रहे हैं ना भी आ किवें हो जूगा, जे इदा हो गया असी किवें वापस करना है, या किन्नी देर का कोर्स है, ऑनलाइन क्लासिज है कि इन परसन है, जां क्रैडिट चैक बारे, यानी कि बड़े सारे क्वेश्चन हुंदे, क्योंकि थोड़ियां मैनूं बहुत सारियां कॉल्स आउंदियां बाद दे विचों, है ना, या कई बार एज दा हुंदा कि साड़ी एज इन्नी होगी असी एलिजिबल हैगे आ। तुसी कोई भी क्वेश्चन करना नंबर नोट कर लो, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक दे सारांश नागपाल दा, 4372-2431-75, 4372643175। ते लो जी मैं थानू नंबर एक बार फिर दे देवां दीपांश दा, पहला सिंगे सारांश हुण हैगे दीपांश, क्योंकि दीपांश ने भेजियां ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਲੀ ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 2nd week ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ $965, 965 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-way ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਹੈ 2 bag ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊ ਸੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਲੇ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ 2 bag ਦੇ ਨਾਲ, 1-way ਹੈ ਇਹ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1045 ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਹੈ। 1 January 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, 2nd week ਦੇ ਵਿੱਚ 1-way ਹੈ, 965 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1 stop 2 bag ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤਾਂ 1-way ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1 stop 2 bag ਦੇ ਨਾਲ, ਫਟਾਫਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-673-1400-905-673-1400। ਹਾਂਜੀ ਸਰ,
2: जी सत श्री अकाल, दोनों आपके पास इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप

0: भेजा दिया फोटो के साथ, देख लीजिए।
1: अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका भी जी, सबको।
1: आज बड़ा स्पेशल दिन है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है आज। काफी वधिया तरीके दे नाल उन्हां दी गल्लां बातां सिखियावां नूं जिहड़ा हैगा मोहम्मद साहब, बिल्कुल जी, साडी मुस्लिम कम्यूनिटी नूं बहुत बहुत वधाइयां अज्ज। ते उहदे बारे वी क्योंकि भाजी ने कुछ कहना होऊगा, पर 59 हो गए, मैं नंबर एक बार दीपांश दा दे दिंदी आ। तुसीं ना जे बहुत वधिया टिकटां, वन वे है इह, इक टिकट 965 दी है जिहड़े तुसीं जनवरी च जाणा, ते इक हैगी है अक्तूबर च दिवाली मौके, ये 1,045 दी है। वन वे है टोरंटो टू दिल्ली, 905-673-1400 हुणे कॉल करो, 905-673-1400 ते तुसी कॉल करके अपने टिकटां जिहड़ियां बुक करा सकदे हो। लो जी, समां हो गया अपना जाण दा, ते मेरे नाल कोई भी गलबात करनी है, कोई थोड़ी कोई भी नीड है, क्योंकि ना इंश्योरेंस इन्नी।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: यार इना इंश्योरेंस ने तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
2: Yamilo 70 Delta Park Boulevard Unit 11 Brampton
3: Namaskar Sasikal main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki
4: Maan tu badhaya mera dukh sare taal ke
3: On 4th September at Eros the Convention Center So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi Aman एंड हरमन और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शाम म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब ने अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है सो

0: मेडिकल इंश्योरेंस नंबर हैगा जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट करदे ने। रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट रियल्टर रेव सिंह। रेव सिंह दी तिक्खी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण ते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकती है। नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600। 647-740-9600 दे कॉल कीती जा सकती है। तुहाडा अपना रियल्टर रेव सिंह।
2: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
3: Punjabi Versa!
4: Sashi Akal Ji.
5: Ji, I am.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
9: रेडियो भी है। एंटरटेनमेंट बिजनेस
10: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
9: पर टिलो वीडियो ते जो मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड, 905-204-1313 जां tillovideo.com। और कोई सेवा?
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
12: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखीर निज्जर।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
2: ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
3: स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
4: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
5: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
6: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
7: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
5: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही ले हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
8: लखा दिला दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर
9: मैं किथे बैठे आ करूं आओ जट खप्पी सीट पे बंदूक रख दे
8: टू साउंड लाइव एंड सेल्यूलर पॉइंट प्रेजेंट आमी वेयर लाइव इन टोरंटो August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
10: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7